तो आम्ही भारतातील टू यू टू यू एंड यू एंड यू एंड टू एव्हरीवन हियर कठीण अंक एक कोसते दिलाम ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू सी कॉलेज स्क्वायर.